0: Media, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरे अखिया प्यासी रे मंदिर

0: नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैनी में थप्लो 7 मेगाहर्ज बाटो मो बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन 2026 अगस्त 1 तारीख श्रावण 16 गते शनिवार तृतीय तिथि अब स्तुति करूं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी।

राजा नवुष का इशारे दौलत से परिपूर्ण होश पवन जाए नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा।

धर्म कुमार कैसर्या श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवस सुजन मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित।